ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। चीन में कौमी दिन मनाने के लिए जुमेरात को हफ्ता भर की तातीलात का आगाज हो गया है। इन तातीलात में करोड़ों चीनी सफर करते हैं, लेकिन बिगड़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात की वजह से जापान आने वाले सियाहों की तादाद में कमी मुतवक्के है। चीनी हुकूमत का तखमीना है कि तातीलात के इस अरसे के दौरान लोग 2.13 अरब बार सफर करेंगे। चीन की बड़ी ट्रेवल एजेंसी का कहना है कि इन तातीलात के दौरान मकबूल इंतखाब जनूबी कोरिया, जनूब मशरकी एशिया और यूरोप हैं। जापान इससे कबल चीनी सयाहों में इंतहाई मकबूल था, लेकिन इस साल सरफहरिस्त मकामात में शामिल नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख होते ताल्लुकात के पस मंजर में चीनी एयरलाइंस ने जापान के लिए कई रूट्स पर परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इसे आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने की अपनी तजवीज़ का अमरीकी जवाब मौसूल हुआ है, लेकिन मुजाकरात के इम्कानात बदस्तूर गैर यकीनी हैं क्योंकि दोनों फरीक अब भी शराइत पर इख्तलाफ रखते हैं। तेहरान ने बुध के रोज़ ये ऐलान किया। ईरानी फरीक ने आबनाए को दोबारा खोलने के लिए एक 7 रोज़ा मंसूबा पेश किया था। अमरीका और ईरान के हुक्काम कतरी सालिसों की मदद से बिलवास्ता मुजाकरात का एक सिलसिला मुनक़िद कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ज़राए ने खबर दी है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची ने सदर मसूद पज़ेशकियान के सामने अमरीकी जवाब पेश किया। जवाब से मुतालिक तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं। ताहम रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने बुध के रोज एक मुतल्लिका जरिए का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेज में एक ऐसे अमल की वजाहत की गई है जो दोनों फरीकेन को जून में तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त के एक बेहतर वर्जन की तरफ वापस ले जाएगा, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ठोस इकदाम शामिल हैं। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान ने जुमेरात से गैर मुल्की शहरियों के लिए रिहायशी इजाज़तनामे के तरीक़ेकार की फ़ीस में इजाफा कर दिया है, और सितंबर तक के 3 महीनों में बड़े जापानी मसनूआत साजों के कारोबारी तासुर में बेहतरी आई है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 2 अक्टूबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। एनएचके को पता चला है कि सरकार ने जापान की संभावित वैकल्पिक राजधानी के लिए मसौदा आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया है। संभावना है कि नामित शहर टोक्यो में कोई बड़ी आपदा आने की स्थिति में सरकार चलाने का एक वैकल्पिक केंद्र बनेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय 4 शहर सापोरो, नागोया, ओसाका और फुकुओका मसौदे की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जुलाई में संसद में संबंधित कानून पारित होने के बाद सरकार एक अध्यादेश को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है, जो वैकल्पिक राजधानी के दर्जे से जुड़ी खास शर्तें तय करेगा। इन मसौदा आवश्यकताओं में से एक ये है कि उम्मीदवार शहर उन इलाकों से बाहर होना चाहिए जिन्हें सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है जहां टोक्यो के ठीक नीचे महाभूकंप या फुजी पर्वत में संभावित विस्फोट का असर पड़ सकता है। एक शर्त यह है कि उम्मीदवार शहर की आबादी देश की कुल आबादी का कम से कम 1.2% होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार शहर के प्रीफेक्चर का सकल घरेलू उत्पाद जापान की जीडीपी का 2.1% या उससे अधिक होना चाहिए। उम्मीदवार शहर ऐसा होना चाहिए जो केंद्र सरकार के 28 प्रकार के शाखा कार्यालयों में से कम आधे कार्यालयों की मेजबानी पहले से कर रहा हो। इसके अलावा उसे टोक्यो की 23 वार्ड इकाइयों जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाने होंगे। नेपाल चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के एक महीने से अधिक समय बाद भी नेपाल में राहत दल

0: नेपाल में जापानी दूतावास के उप प्रमुख शिंतो यासुहारू ने कहा कि पीड़ितों की पहचान करना एक चुनौती है। उन्होंने आगे कहा, नेपाल में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और लापता लोगों में विदेशी नागरिक भी हैं। हमें इस प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। जापान सरकार डीएनए जांच उपकरण उपलब्ध कराने तथा नेपाल में और विशेषज्ञ भेजने की योजना बना रही है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में चरमपंथी गुटों के शिविरों और ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें 22 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने दो जगहों पर सटीक हमले किए। उसका कहना है कि चरमपंथी अफगानिस्तान से सीमा पार करके पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान अंतरिम सरकार के एक प्रवक्ता ने भी बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। प्रवक्ता ने लिखा कि पाकिस्तानी विमानों ने पूर्वी प्रांत कुनार और दक्षिणी प्रांत हेलमंद में मकानों पर बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 9 नागरिक मारे गए। प्रवक्ता ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें सभी स्वीकृत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला आक्रमण और अपराध बताया। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अब भी आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, जबकि तालिबान इस दावे का खंडन करता है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में वकीलों के एक समूह ने सरकार से अमेरिका के साथ बातचीत करने और अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जापानी प्रमुख के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए एक याचिका सौंपी है। ये वकील ICC अध्यक्ष अकाने तोमोको के पूर्व छात्र हैं। अकाने पहले मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रीफेक्चर में लॉ कॉलेजों में पढ़ाया करती थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अगस्त में ICC के आला अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाकर न्यायालय पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इन प्रतिबंधों में अमरीका में अकाने की परिसंपत्तियां फ्रीज करना भी शामिल है। इसके जवाब में वकीलों के समूह ने ऑनलाइन लगभग 1,74,600 हस्ताक्षर एकत्र किए और बृहस्पतिवार को मुख्य कैबिनेट उपसचिव ओजाकी मासानाओ को याचिका और एक अनुरोध पत्र सौंपा। अनुरोध पत्र में सरकार से अमरीकी प्रतिबंधों का स्पष्ट विरोध करने और उन्हें हटवाने की दिशा में ठोस चर्चा करने का आह्वान किया गया है। जापानी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों द्वारा उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से बचाने के लिए 1 अक्टूबर से उपाय करने होंगे। ऐसे व्यवहार को ग्राहक द्वारा उत्पीड़न माना जाता है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। ग्राहक द्वारा ऐसी मांगे करना जिनका उत्पादों या सेवाओं से कोई लेना देना न हो, कामगारों को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए मजबूर करना और ऊंची आवाज में चिल्लाकर डराना धमकाना आदि कृत्य उत्पीड़न के दायरे में आते हैं। श्रम नीति प्रोत्साहन कानून में संशोधन के बाद अब कंपनियों को इस तरह के दुर्व्यवहार से दृढ़ता से निपटने और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को सार्वजनिक करना होगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को यह भी बताना होगा कि उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जैसे उत्पीड़न का शिकार हो रहे कर्मचारी को अकेले स्थिति से निपटने न देना। कंपनियों को परामर्श केंद्र स्थापित करने और पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान करने की भी आवश्यकता है। उपायों को लागू करने में विफल कंपनियों का नाम दंड स्वरूप सार्वजनिक भी किया जा सकता है। अमरीकी समाचार पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली उभरते सितारों की वार्षिक सूची में क्योटो के यावाता शहर की महापौर कावाता शोको को जगह दी है। पत्रिका ने बुधवार को टाइम 100 नेक्स्ट 2026 सूची की घोषणा की, जिसमें उन अग्रणी लोगों को शामिल किया गया है जो सामाजिक गतिविधियों, मनोरंजन और खेल सहित अपने अपने क्षेत्रों में भविष्य को आकार दे रहे हैं। कावाता शोको 2023 में

35 वर्ष की आयु में यवाता शहर की महापौर चुनी गई थी, जिसके साथ ही वे जापान की सबसे युवा महिला महापौर बन गई थी। पत्रिका के अनुसार कावाता ने इस साल की शुरुआत में मातृत्व अवकाश लेने जैसे एक साधारण से फैसले से एक बार फिर इतिहास रचा। पत्रिका के अनुसार जापान में कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मिलता है, लेकिन निर्वाचित महापौर इस सुविधा के दायरे में नहीं आते। पहले ऐसी कोई मिसाल न होने पर कावाता ने खुद ये मिसाल कायम की। पत्रिका का कहना है कि कावाता ने 16 सप्ताह के लिए अपने अधिकार उप महापौर को सौंपे और ऑनलाइन बैठकों में भाग लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाय मिन्ना दे 一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ、二人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा,
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस शनिवार काइतो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतों नी निंजा गा सुकी देसु ने।
1: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
0: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
2: हाय मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
0: हाँ क्यों ना, सब साथ चलें।
1: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: ओह, शनिवार को तो जरा।
0: ताम ने भी कहा,
3: वताशिमो जुग्यो गा अरिमास।
1: मेरी भी क्लास है।
0: ये सुनकर काइतो बोला,
4: जानने,
0: ये तो अफसोस की बात है।
4: जा, फ्तारी देखो।
0: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
1: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृह नगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी इकिमासेन का,
1: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
5: इकिमासेन
0: है क्रिया,
5: इक
0: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इश्शो नी इकिमासेन का
1: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
5: मासेन
1: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इकिमासेन का, इश्शो नी इकिमासेन का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
1: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
0: यहाँ
5: कोंबन
0: का अर्थ है आज शाम,
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में, और
5: गोहान
0: का मतलब है खाना। तो
5: गोहान ओ तबे नी इक
0: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
1: क्रिया
5: इक
1: यानी जाना से बना है
5: इकिमासेन का,
1: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: ठीक है, चलते हैं।
5: ई देसु ने
0: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
5: इकिमाशो
0: है क्रिया
5: इक
0: यानी जाना का माशो रूप, इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
1: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिंगो तोरी माशो, यानी फोटो खींचते हैं।
0: उसमें और मासेंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासेंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
1: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
5: मिन्ना दे,
0: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
5: बारबेक्यू ओ सुरु।
0: क्रिया
5: सुरु
0: यानी करना का मास रूप है
5: शिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: 土曜日はちょっと。
0: असल में
5: ちょっと
0: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
5: छोटो।
1: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
5: तो यो पिवा छोटो,
1: जो घुमा फिरा कर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
0: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।
1: निंजा का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
0: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं, और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
0: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे, ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
1: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये न जान पाए कि वो आसपास हैं, और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
0: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे, और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है, शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: 国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 अक्टूबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। एनएचके को पता चला है कि सरकार ने जापान की संभावित वैकल्पिक राजधानी के लिए मसौदा आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया है। संभावना है कि नामित शहर टोक्यो में कोई बड़ी आपदा आने की स्थिति में सरकार चलाने का एक वैकल्पिक केंद्र बनेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय 4 शहर सापोरो, नागोया, ओसाका और फुकुओका मसौदे की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जुलाई में संसद में संबंधित कानून पारित होने के बाद सरकार एक अध्यादेश को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है, जो वैकल्पिक राजधानी के दर्जे से जुड़ी खास शर्तें तय करेगा। इन मसौदा आवश्यकताओं में से एक ये है कि उम्मीदवार शहर उन इलाकों से बाहर होना चाहिए जिन्हें सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है जहां टोक्यो के ठीक नीचे महाभूकंप या फुजी पर्वत में संभावित विस्फोट का असर पड़ सकता है। एक शर्त यह है कि उम्मीदवार शहर की आबादी देश की कुल आबादी का कम से कम 1.2% होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार शहर के प्रीफेक्चर का सकल घरेलू उत्पाद जापान की जीडीपी का 2.1% या उससे अधिक होना चाहिए। उम्मीदवार शहर ऐसा होना चाहिए जो केंद्र सरकार के 28 प्रकार के शाखा कार्यालयों में से कम आधे कार्यालयों की मेजबानी पहले से कर रहा हो। इसके अलावा उसे टोक्यो की 23 वार्ड इकाइयों जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाने होंगे। नेपाल चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के 1 महीने से अधिक समय बाद भी नेपाल में राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। मृतकों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती है जिसमें जापान सरकार मदद कर रही है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि 26 अगस्त की इस आपदा में 1400 से अधिक लोग मारे गए जबकि 5200 से अधिक लोग लापता हैं। 2 सप्ताह तक जापानी दल ने बरामद शवों से उंगलियों के निशान और डीएनए के नमूने इकट्ठे किए। अब तक लगभग 110 शवों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। ये आंकड़ा मृतकों के 10% से भी कम है। कई शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुके हैं।

0: जिनमें 22 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने दो जगहों पर सटीक हमले किए। उसका कहना है कि चरमपंथी अफगानिस्तान से सीमा पार करके पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान अंतरिम सरकार के एक प्रवक्ता ने भी बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। प्रवक्ता ने लिखा कि पाकिस्तानी विमानों ने पूर्वी प्रांत कुनार और दक्षिणी प्रांत हेलमंद में मकानों पर बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 9 नागरिक मारे गए। प्रवक्ता ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें सभी स्वीकृत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला आक्रमण और अपराध बताया। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अब भी आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, जबकि तालिबान इस दावे का खंडन करता है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में वकीलों के एक समूह ने सरकार से अमेरिका के साथ बातचीत करने और अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जापानी प्रमुख के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए एक याचिका सौंपी है। ये वकील ICC अध्यक्ष अकाने तोमोको के पूर्व छात्र हैं। अकाने पहले मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रीफेक्चर में लॉ कॉलेजों में पढ़ाया करती थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अगस्त में ICC के आला अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाकर न्यायालय पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इन प्रतिबंधों में अमरीका में अकाने की परिसंपत्तियां फ्रीज करना भी शामिल है। इसके जवाब में वकीलों के समूह ने ऑनलाइन लगभग 1,74,600 हस्ताक्षर एकत्र किए और बृहस्पतिवार को मुख्य कैबिनेट उपसचिव ओजाकी मासानाओ को याचिका और एक अनुरोध पत्र सौंपा। अनुरोध पत्र में सरकार से अमरीकी प्रतिबंधों का स्पष्ट विरोध करने और उन्हें हटवाने की दिशा में ठोस चर्चा करने का आह्वान किया गया है। जापानी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों द्वारा उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से बचाने के लिए 1 अक्टूबर से उपाय करने होंगे। ऐसे व्यवहार को ग्राहक द्वारा उत्पीड़न माना जाता है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। ग्राहक द्वारा ऐसी मांगे करना जिनका उत्पादों या सेवाओं से कोई लेना देना न हो, कामगारों को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए मजबूर करना और ऊंची आवाज में चिल्लाकर डराना धमकाना आदि कृत्य उत्पीड़न के दायरे में आते हैं। श्रम नीति प्रोत्साहन कानून में संशोधन के बाद अब कंपनियों को इस तरह के दुर्व्यवहार से दृढ़ता से निपटने और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को सार्वजनिक करना होगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को यह भी बताना होगा कि उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जैसे उत्पीड़न का शिकार हो रहे कर्मचारी को अकेले स्थिति से निपटने न देना। कंपनियों को परामर्श केंद्र स्थापित करने और पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान करने की भी आवश्यकता है। उपायों को लागू करने में विफल कंपनियों का नाम दंड स्वरूप सार्वजनिक भी किया जा सकता है। अमरीकी समाचार पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली उभरते सितारों की वार्षिक सूची में क्योटो के अवाता शहर की महापौर कावाता शोको को जगह दी है। पत्रिका ने बुधवार को टाइम 100 नेक्स्ट 2026 सूची की घोषणा की, जिसमें उन अग्रणी लोगों को शामिल किया गया है जो सामाजिक गतिविधियों, मनोरंजन और खेल सहित अपने अपने क्षेत्रों में भविष्य को आकार दे रहे हैं। कावाता शोको 2023 में 33 वर्ष की आयु में यावाता शहर की महापौर चुनी गई थी, जिसके साथ ही वे जापान की सबसे युवा महिला महापौर बन गई थीं। पत्रिका के अनुसार कावाता ने इस साल की शुरुआत में मातृत्व अवकाश लेने जैसे एक साधारण से फैसले से एक बार फिर इतिहास रचा। पत्रिका के अनुसार जापान में कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मिलता है, लेकिन निर्वाचित महापौर इस सुविधा के दायरे में नहीं आते। पहले ऐसी कोई मिसाल न होने पर कावाता ने खुद ये मिसाइल कायम की। पत्रिका का

0: मानना है कि कवाता ने 16 सप्ताह के लिए अपने अधिकार उपमहापौर को सौंपे और ऑनलाइन बैठकों में भाग लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाई, मिन्ना दे 一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ、二人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा,
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस शनिवार काइतो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
1: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
0: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
2: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
0: हाँ, क्यों ना सब साथ चलें?
1: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: ओह, शनिवार को तो जरा।
0: ताम ने भी कहा,
3: वाताशी मो जुग्यो गा अरिमासु।
1: मेरी भी क्लास है।
0: ये सुनकर काइतो बोला,
4: जानने,
0: ये तो अफसोस की बात है।
4: जा, फ्तारी देखो।
0: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
1: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं, वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृह नगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी इकिमासेन का,
1: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
5: इकिमासेन
0: है क्रिया,
5: इकु
0: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इश्शो नी इकिमासेन का
1: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
5: मासेन
1: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इकिमासेन का,
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
1: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
0: यहाँ
5: कोंबन
0: का अर्थ है आज शाम,
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में, और
5: गोहान
0: का मतलब है खाना। तो
5: गोहान ओ तबे नी इकु
0: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
1: क्रिया
5: इक
1: यानी जाना से बना है
5: इकिमासेन का,
1: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: ठीक है, चलते हैं।
5: ई देसु ने
0: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
5: इकिमाशो
0: है क्रिया
5: इक
0: यानी जाना का माशो रूप, इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
1: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिंगो तोरी माशो, यानी फोटो खींचते हैं।
0: उसमें और मासेंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासेंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
1: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
5: मिन्ना दे,
0: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
5: बारबेक्यू ओ सुरु।
0: क्रिया
5: सुरु
0: यानी करना का मास रूप है
5: शिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: दोयोबी वा चोट्टो।
0: असल में
5: चोट्टो
0: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
5: चोट्टो।
1: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
5: तोयोबी वा चोट्टो,
1: जो घुमा फिराकर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
0: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
5: तोयोबी वा चोट्टो।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
6: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।
1: निंजा का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
0: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं, और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
0: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे, ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
1: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये न जान पाएं कि वो आसपास हैं, और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
0: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे, और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है, शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान में वोकला के एक ग्रुप ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करे और वॉशिंगटन से कहे कि वो बैन अलाक्वामी फौजदारी अदालत ICC की जापानी सरबराह के खिलाफ आयद पाबंदियां वापस ले। वोकला ICC की सदर अकाने तोमोको के उस दौर के तालिब इल्म हैं जब वो वस्ती जापान के आईची प्रिफेक्चर में कानून के स्कूलों में पढ़ाती थीं। अगस्त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ICC की कयादत पर यह इल्जाम लगाते हुए पाबंदियां आयद की कि वो बदनीयती के साथ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन पाबंदियों में अमरीका में अकाने के असासों को मुंजमद करना भी शामिल है। इसके जवाब में वकला के इस ग्रुप ने तकरीबन 1,74,600 दस्तखत ऑनलाइन हासिल किए और जुमेरात को डेप्टी चीफ काबीना सेक्रेटरी ओजाकी मासानाओ को पिटिशन और दरखास्ती खत पेश किया। खत में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो वाजह तौर पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत का इजहार करे और इन्हें हटाने के लिए ठोस बातचीत करे। जापान में कंपनियों को 1 अक्टूबर से अपने कारकुनों को सार्फीन या कारोबारी शराकत दारों की तरफ से हिरासा किए जाने या बदसलूकी से बचाने के लिए इकदाम करना लाजमी है। सार्फ की जानिब से हिरासा किए जाने की तारीफ ऐसे रवैये के तौर पर की जाती है जो समाजी तौर पर काबिल कबूल उसूलों से मुतजाविज हो। इसमें मसनूआत और खिदमात से गैर मुतल्लिका मुतालबात करना, कारकुनों को घुटने टेक कर मुआफी मांगने पर मजबूर करना, नीज चीख चीख कर डराना धमकाना शामिल है। लेबर पॉलिसी प्रमोशन कानून में की गई एक तरमीम कंपनियों को पाबंद करती है कि वो ऐसी बदसलूकी का सख्ती से जवाब दें और अमले के तहफ्फुज़ की अपनी पॉलिसियों को मंजरे आम पर लाएं। कंपनी पर लाजिम होगा कि वो हिरासा किए जाने वाले कारकुन को सूरत हाल से अकेले निमटने की इजाजत ना देने जैसे उठाए जाने वाले इकदाम से अमले को मुत्तला करे। कंपनियों के लिए मुशावरती बूथ कायम करना भी जरूरी होगा और मुतासरीन की नफसियाती इमदाद करनी होगी। इकदाम नाफिज ना करने वाली कंपनियों के लिए एक मुमकिना सजा ये हो सकती है कि उनके नाम अवामी सतह पर इफ्शा कर दिए जाएं। अमरीकी खबर रसा मैगजीन टाइम ने दुनिया के 100 सबसे ज्यादा बाअसर उभरते सितारों की अपनी सालाना फहरिस्त में क्योतो के यावाता सिटी की मेयर कावाता शोको का नाम शामिल किया है। मैगजीन ने बुध के रोज टाइम 100 नेक्स्ट 2026 फहरिस्त का ऐलान किया जिसमें ऐसे रहनुमाओं को शामिल किया गया है जो समाजी सरगर्मियों, तफरीह और खेलों समेत अपने अपने शोबों में मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहे हैं। साल 2023 में कावाता शो को 33 साल की उम्र में यावाता शहर की क्यादत के लिए मुंतखब होकर जापान की अब तक की सबसे कम उम्र खातून मेयर बनी। मैगजीन का कहना है कि उन्होंने इस साल के शुरू में बजाहिर एक मामूली फैसले यानी जचगी की छुट्टी लेने पर दोबारा तारीख रकम की है। मैगजीन निशानदेही करता है कि अगरचे जापान कारकुनों को जचगी की छुट्टी फराहम करता है लेकिन मुंतखब मेयर्स इन लेबर सहूलियात से बाहर हैं, इसलिए अमल करने के लिए किसी साबिका नजीर की अदम मौजूदगी में कावाता ने एक नई मिसाल कायम की। मैगजीन का कहना है कि उन्होंने 16 हफ्तों के लिए अपने इख्तियारात डिप्टी मेयर को मुंतकिल कर दिए और इस दौरान दूर बैठे ब्रीफिंग्स में शिरकत जारी रखी और अहम फैसलों में भी शामिल रहीं।
1: सामिन, इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और दीगर मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर तशरीफ लाएं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 अक्टूबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। एनएचके को पता चला है कि सरकार ने जापान की संभावित वैकल्पिक राजधानी के लिए मसौदा आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया है। संभावना है कि नामित शहर टोक्यो में कोई बड़ी आपदा आने की स्थिति में सरकार चलाने का एक वैकल्पिक केंद्र बनेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय 4 शहर सापोरो, नागोया, ओसाका और फुकुओका मसौदे की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जुलाई में संसद में संबंधित कानून पारित होने के बाद सरकार एक अध्यादेश को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है, जो वैकल्पिक राजधानी के दर्जे से जुड़ी खास शर्तें तय करेगा। इन मसौदा आवश्यकताओं में से एक ये है कि उम्मीदवार शहर उन इलाकों से बाहर होना चाहिए जिन्हें सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है जहां टोक्यो के ठीक नीचे महाभूकंप या फुजी पर्वत में संभावित विस्फोट का असर पड़ सकता है। एक शर्त यह है कि उम्मीदवार शहर की आबादी देश की कुल आबादी का कम से कम 1.2% होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार शहर के प्रीफेक्चर का सकल घरेलू उत्पाद जापान की जीडीपी का 2.1% या उससे अधिक होना चाहिए। उम्मीदवार शहर ऐसा होना चाहिए जो केंद्र सरकार के 28 प्रकार के शाखा कार्यालयों में से कम आधे कार्यालयों की मेजबानी पहले से कर रहा हो। इसके अलावा उसे टोक्यो की 23 वार्ड इकाइयों जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाने होंगे। नेपाल चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के 1 महीने से अधिक समय बाद भी नेपाल में राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। मृतकों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती है जिसमें जापान सरकार मदद कर रही है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि 26 अगस्त की इस आपदा में 1400 से अधिक लोग मारे गए जबकि 5200 से अधिक लोग लापता हैं। 2 सप्ताह तक जापानी दल ने बरामद शवों से उंगलियों के निशान और डीएनए के नमूने इकट्ठे किए। अब तक लगभग 110 शवों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। यह आंकड़ा मृतकों के 10% से भी कम है। कई शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुके हैं। नेपाल में जापानी दूतावास के उप प्रमुख शिंतो यासुहारू ने कहा कि पीड़ितों की पहचान करना एक चुनौती है। उन्होंने आगे कहा, नेपाल में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और लापता लोगों में विदेशी नागरिक भी हैं। हमें इस प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। जापान सरकार डीएनए जांच उपकरण उपलब्ध कराने तथा नेपाल में और विशेषज्ञ भेजने की योजना बना रही है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में चरमपंथी गुटों के शिविरों और ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं जिनमें 22 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने 2 जगहों पर सटीक हमले किए। उसका कहना है कि चरमपंथी अफगानिस्तान से सीमा पार करके पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान अंतरिम सरकार के एक प्रवक्ता ने भी बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। प्रवक्ता ने लिखा कि पाकिस्तानी विमानों ने पूर्वी प्रांत कुनार और दक्षिणी प्रांत हेलमंद में मकानों पर बमबारी की जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 9 नागरिक मारे गए। प्रवक्ता ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें सभी स्वीकृत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला आक्रमण और अपराध बताया। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अब भी आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, जबकि तालिबान इस दावे का खंडन करता है।
1: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में वकीलों के एक समूह ने सरकार से अमेरिका के

पूर्ण इरादे से अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इन प्रतिबंधों में अमेरिका में अकाने की परिसंपत्तियां फ्रीज करना भी शामिल है। इसके जवाब में वकीलों के समूह ने ऑनलाइन लगभग 1,74,600 हस्ताक्षर एकत्र किए और बृहस्पतिवार को मुख्य कैबिनेट उपसचिव ओजाकी मासानाओ को याचिका और एक अनुरोध पत्र सौंपा। अनुरोध पत्र में सरकार से अमरीकी प्रतिबंधों का स्पष्ट विरोध करने और उन्हें हटवाने की दिशा में ठोस चर्चा करने का आह्वान किया गया है। जापानी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों द्वारा उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से बचाने के लिए 1 अक्टूबर से उपाय करने होंगे। ऐसे व्यवहार को ग्राहक द्वारा उत्पीड़न माना जाता है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। ग्राहक द्वारा ऐसी मांगे करना जिनका उत्पादों या सेवाओं से कोई लेना देना न हो, कामगारों को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए मजबूर करना और ऊंची आवाज में चिल्लाकर डराना धमकाना आदि कृत्य उत्पीड़न के दायरे में आते हैं। श्रम नीति प्रोत्साहन कानून में संशोधन के बाद अब कंपनियों को इस तरह के दुर्व्यवहार से दृढ़ता से निपटने और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को सार्वजनिक करना होगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ये भी बताना होगा कि उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जैसे उत्पीड़न का शिकार हो रहे कर्मचारी को अकेले स्थिति से निपटने न देना। कंपनियों को परामर्श केंद्र स्थापित करने और पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान करने की भी आवश्यकता है। उपायों को लागू करने में विफल कंपनियों का नाम दंड स्वरूप सार्वजनिक भी किया जा सकता है। अमरीकी समाचार पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली उभरते सितारों की वार्षिक सूची में क्योटो के अवाता शहर की महापौर कावाता शोको को जगह दी है। पत्रिका ने बुधवार को टाइम 100 नेक्स्ट 2026 सूची की घोषणा की जिसमें उन अग्रणी लोगों को शामिल किया गया है जो सामाजिक गतिविधियों, मनोरंजन और खेल सहित अपने अपने क्षेत्रों में भविष्य को आकार दे रहे हैं। कावाता शोको 2023 में 33 वर्ष की आयु में यावाता शहर की महापौर चुनी गई थी जिसके साथ ही वे जापान की सबसे युवा महिला महापौर बन गई थी। पत्रिका के अनुसार कावाता ने इस साल की शुरुआत में मातृत्व अवकाश लेने जैसे एक साधारण से फैसले से एक बार फिर इतिहास रचा। पत्रिका के अनुसार जापान में कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मिलता है लेकिन निर्वाचित महापौर इस सुविधा के दायरे में नहीं आते। पहले ऐसी कोई मिसाल न होने पर कावाता ने खुद ये मिसाल कायम की। पत्रिका का कहना है कि कावाता ने 16 सप्ताह के लिए अपने अधिकार उप महापौर को सौंपे और ऑनलाइन बैठकों में भाग लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाई मिन्ना दे 一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ、二人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा।

0: 度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: इस शनिवार काइटो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ।
2: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतोनी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
1: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
0: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
1: हाँ, क्यों ना सब साथ चलें?
2: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
2: ओह, शनिवार को तो जरा।
1: ताम ने भी कहा,
4: वतश मो जुग्यो गा अरिमासु।
2: मेरी भी क्लास है।
1: ये सुनकर काइतो बोला,
5: जान्ने,
1: ये तो अफसोस की बात है।
5: जा, फुतारी दे इको।
1: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
2: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं, वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृह नगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है
0: इश्शो नी इकिमासेन का,
2: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
6: इश्शो नी
1: का अर्थ है साथ में,
6: इकिमासेन
1: है क्रिया,
6: इकु
1: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
6: इश्शो नी इकिमासेन का
2: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
6: मासेन
2: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
1: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
6: इकिमासेन का, इश्शो नी इकिमासेन का।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
7: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ ताबे नी इकिमासेन का?
8: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
7: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ ताबे नी इकिमासेन का?
2: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
1: यहाँ
6: कोंबन
1: का अर्थ है आज शाम,
6: इश्शो नी
1: का अर्थ है साथ में, और
6: गोहान
1: का मतलब है खाना। तो
6: गोहान ओ ताबे नी इकु
1: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
2: क्रिया
6: इक
2: यानी जाना से बना है
6: इकिमासेन का,
2: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
8: ई देसु ने, इकिमाशो।
2: ठीक है, चलते हैं।
6: ई देसु ने
1: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
6: इकिमाशो
1: है क्रिया
6: इक
1: यानी जाना का माशो रूप। इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
2: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था, और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिओ तोरी माशो यानी फोटो खींचते हैं।
1: उसमें और मासेंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासेंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
2: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
6: गोहान ओ ताबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ ताबे नी इकिमासेन का? कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ ताबे नी इकिमासेन का?
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
6: मिन्ना दे,
1: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
6: बारबेक्यू ओ सुरु।
1: क्रिया
6: सुरु
1: यानी करना का मास रूप है
6: शिमास।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: मिन्ना दे बारबेक्यू ओ शिमासेन का। मिन्ना दे बारबेक्यू ओ शिमासेन का।
2: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: असल में
6: चोट्टो
1: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
6: चोट्टो।
2: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
6: दोयोबी वा चोट्टो,
2: जो घुमा फिराकर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
1: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
6: दोयोबी वा चोट्टो।
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
0: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。
4: 私も授業があります。
5: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।
2: निंजा का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
1: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
2: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं। और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
1: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे। ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
2: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये ना जान पाएं कि वो आसपास हैं। और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
1: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे। और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है। शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
9: रेडियो जापान टोक्यो।

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान में वोकला के एक ग्रुप ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करे और वॉशिंगटन से कहे कि वो बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत ICC की जापानी सरबराह के खिलाफ आयद पाबंदियां वापस ले। वोकला ICC की सदर अकाने तोमोको के उस दौर के तालिब इल्म हैं जब वो वस्ती जापान के आईची प्रिफेक्चर में कानून के स्कूलों में पढ़ाती थीं। अगस्त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ICC की क्यादत पर यह इल्जाम लगाते हुए पाबंदियां आयद की कि वो बदनीयती के साथ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन पाबंदियों में अमरीका में अकाने के असासों को मुंजमद करना भी शामिल है। इसके जवाब में वकला के इस ग्रुप ने तकरीबन 1,74,600 दस्तखत ऑनलाइन हासिल किए और जुमेरात को डेप्टी चीफ काबीना सेक्रेटरी ओजा की मसनाओ को पिटिशन और दरख्वास्ती खत पेश किया। खत में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो वाजह तौर पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत का इजहार करे और इन्हें हटाने के लिए ठोस बातचीत करे। जापान में कंपनियों को 1 अक्टूबर से अपने कारकुनों को सार्फीन या कारोबारी शराकतदारों की तरफ से हिरासा किए जाने या बदसलूकी से बचाने के लिए इकदाम करना लाजमी है। सार्फ की जानिब से हिरासा किए जाने की तारीफ ऐसे रवैये के तौर पर की जाती है जो समाजी तौर पर काबिल कबूल उसूलों से मुतजाविज हो। इसमें मसनूआत और खिदमात से गैर मुतल्लिका मुतालबात करना, कारकुनों को घुटने टेक कर मुआफी मांगने पर मजबूर करना, नीज चीख चीख कर डराना धमकाना शामिल है। लेबर पॉलिसी प्रमोशन कानून में की गई एक तरमीम कंपनियों को पाबंद करती है कि वो ऐसी बदसलूकी का सख्ती से जवाब दें और अमले के तहफ्फुज़ की अपनी पॉलिसियों को मंजर आम पर लाएं। कंपनी पर लाजिम होगा कि वो हिरासा किए जाने वाले कारकुन को सूरत हाल से अकेले निमटने की इजाजत ना देने जैसे उठाए जाने वाले इकदाम से अमले को मुत्तला करे। कंपनियों के लिए मुशावरती बूथ कायम करना भी जरूरी होगा और मुतासरीन की नफसियाती इमदाद करनी होगी। इकदाम नाफिज ना करने वाली कंपनियों के लिए एक मुमकिना सजा ये हो सकती है कि उनके नाम अवामी सतह पर इफ्शा कर दिए जाएं। अमरीकी खबर रसा मैगजीन टाइम ने दुनिया के 100 सबसे ज्यादा बाअसर उभरते सितारों की अपनी सालाना फहरिस्त में क्योतो के यावाता सिटी की मेयर कावाता शोको का नाम शामिल किया है। मैगजीन ने बुध के रोज टाइम 100 नेक्स्ट 2026 फहरिस्त का ऐलान किया, जिसमें ऐसे रहनुमाओं को शामिल किया गया है जो समाजी सरगर्मियों, तफरीह और खेलों समेत अपने अपने शोबों में मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहे हैं। साल 2023 में कावाता शो को 33 साल की उम्र में यावाता शहर की क्यादत के लिए मुंतखब होकर जापान की अब तक की सबसे कम उम्र खातून मेयर बनी। मैगजीन का कहना है कि उन्होंने इस साल के शुरू में बजाहिर एक मामूली फैसले यानी जचगी की छुट्टी लेने पर दोबारा तारीख रकम की है। मैगजीन निशानदेही करता है कि अगरचे जापान कारकुनों को जचगी की छुट्टी फराहम करता है, लेकिन मुंतखब मेयर्स इन लेबर सहूलियात से बाहर हैं, इसलिए अमल करने के लिए किसी साबिका नजीर की अदम मौजूदगी में कावाता ने एक नई मिसाल कायम की। मैगजीन का कहना है कि उन्होंने 16 हफ्तों के लिए अपने इख्तियारात डिप्टी मेयर को मुंतकिल कर दिए और इस दौरान दूर बैठे ब्रीफिंग्स में शिरकत जारी रखी और अहम फैसलों में भी शामिल रही।
1: सामिन, इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और दीगर मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर तशरीफ लाएं।